0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: तपाईँको दर्शन गर्नुहुनेछ। आजको वचन सुनाइद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: प्रिय श्रोता, प्रभावशाली बाइबल शिक्षक तथा आत्मिक मार्गदर्शक सोन भिक्टर द्वारा लिखित सन्देश हाम्रो आफ्नै नेपाली भाषामा सुन्नुभयो। रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ, मेरो विश्वासमा चमक ल्याउनुहोस्।
2: कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39।
1: हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
3: को दो निछिया आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। सफल जुई त थम अनुशासित जु जयमसी जोजलपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ यो जीवनिया छेन श्रृंखला भाग 24 के शीर्षकसित न लसकुस गुलिस न अनुशासन या त बाम लागु खगो ताकि इम्स ठुकी या त चिचेगो कुत याई त रङ्गु सफलता क्या त अनुशासन मा धका इम्स साहेब वो साइके मफु अनुशासन हि मनुटेस परिस्थिति थ त लादे यागु प्रभाव या त प्रतिरोध याई अले थगु जीवने लगभग गब्ले न नियन्त्रण दैमखु मेफिन्स छु या धका धाल धासा इम्स मत्तिक प्रतिक्रिया ब्यासुनी छ थ थम अनुशासन मयासा संसान छङ्गु नीति याई अनुशासित मनुतेस थगु हे मूल्य मान्यता नालाकाई अले इमगु उगु मूल्य मान्यता आधारित ज्याख वो प्रतिक्रिया ले छिगु जीवनिया त नियन्त्रण टेबले अनुशासन देके मागु तस्क महत्वपूर्ण जुई विशेष याना छिगु भविष्य या नीति यो पि नियनमेपि अनुशासन ताठेगु अर्थ सुख भविष्य थ त यक्कु त दङ्गु उपलब्धि पाखे निर्देशित याए त तत्काल सन्तुष्टि या त लिपा लागेगु क्षमता ख ठुकी अप्प दीर्घकालीन फाइदा क्याए त छित मागु ख या त अल्पकालीन रूपमा स्थगित यायगु न समावेश दु नापाङ्गु कोरन्थी गुगु अध्यायु निगु नि पेङ्गु पत्के ढाटगुदु भ्याउनेगु कासे फुक्क मनु त भ्याउने तर नापाङ्गु शिर्पा धासा छमसित जक्क दै धका छमिसिन सिउला उखी शिर्पा क्याएर भ्याउनेगु कुत यानासो छक छिने छु प्राप्त याइगु धका निर्णय यादुङ्गा उगु लक्ष्य थगु यक्कु यी वकुत लगानी याना दिस नापाङ्गुको रन्थी गुगु अध्यायु नि न्याको पत्के धाया टगुडु न्यागु कासा वती काइपी मनु त्यस नापा लाकन नसा जुया वनिगु शिर्पा काय त निथियन झ कुत याना सुनि अछे हे झिसन ना सुया वनिगु शिर्पा काय त कुत यायमा परमेश्वर व ख्रिस्ट येशुलिसे स्वापु मधुनी मनु त्यस न सांसारिक लक्ष्य पुगुङ्के त अनुशासन छेली अनुशासन या नीति छगु निश्चित शिर्पा या नीति ध्यान बिमा अले थुकिया क्या त छ यक्कु कुत यामा नापाङ्गु कुरन्थी गुगु अध्यायु नि खुगु पत्के धाटकु दु अज्यागुली निशाना ठेङ्गे त भ्यामुनी जी फे मुक्का नकिथे जक्क मैना छु लक्ष्य प्राप्त याइगु धका निर्धारण याइगु दुङ्का अनुशासन लागु याइगु यी वोगुदु उखियाना छिगु लक्ष्य थेङ्की फै नापाङ्गु कुरन्थी गुहु अध्यायु नि नेगु पत्के धाया तगुदु जी थगु मया त दाया वया त तया सुना थथे मयासा मेपिन त जक भिङ्गु ख निङ्का जी थहे शिर्पा क्या बम रिमखु येशु ख्रिस्ट लिहा वैबले परमेश्वर वया त अनन्त शिर्पा व्याधि धका सिका प्रेरित पावल थगु आत्मिकी जीवन अनुशासन लागु याना दिल थगु व्यक्तिगत जीवन या त नीति यशु व्याधिको बोलावट पुङ्के त थ त अनुशासित या त अछिए खना उखिया नीति त धङ्गु त्याग यायमा झिसन अछि हे यायगु बुद्धिमानी जुई कोल हर्ट नामे चम छम ल्यामदु गुम अमेरिका जन्मजुगु ख वेखल 1500 मिटर या प्रतिस्पर्धी ख 2024 या ओलम्पिक कासाया जुगु ज्याजो ले वती काइगु आजु तगु ख विश्व चपी कासामी दुगु ठ्या थुगु कायसा निति वया त लेगु ख कोल थगु कासा त्याकी धका आशा मयागु ख समाचार भिडियो व खेलकुद च्याम्पियनसिप उगु कासे मेपी निसे कायसा त्याकेगु सम्भावना अप्प दुगु धका दु कासा मेपी अन्तिमे ल्याबे ठेङ्के त व्यावना चङ्गु इले कोल हर्क मेपिम निम कासा मेपिन त पार्याना नापा सिरेगु लाइने पार यागु ख व थ त धङ्गु अनुशासने नाप नाप निथिया थाकुग परीक्षण वया त सफलता शिखरे यङ्कल ओलम्पिक कासा स्वर्ण पदक त्याकुगु ख यो पि नियनमेपि छि जीवने गन हुने तेन छि छिगु प्राप्त यायगु आशा याना दिया यदि छि मेहनत अनुशासन या माध्यम थ त मागु खया नीति राणा दि मखुसा अले थ त मव धका गुनासो याए मते छिगु जीवनया नीति परमेश्वर बियादिगु अजु चाहे पुगु लक्ष्य पुङ्के त थ थम अनुशासित जुइगु ल्यादिस थया वचन नेना दिगुनी छित परमेश्वर सुव्याबीमा जय मसी छिम्सा नकतिन हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षकको आत्तिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेट जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।